0: रात्रि नवे आई
1: myfm.lk
0: ए हिटियात मैं हिटियात हितो तो दैनिना रिदमय लाइव एफएम।